0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालय द मरगानो फग आवाजुना और द फिजा ताजा सुकून दा वक्ते चिखपल जत सुकून वरकड़े औखपल वस बख सोच सरा पेल कड़े राजे चे यूशु द खुशाले द मुस्का औ मुस्बत खबर सरा तासो अवरई

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: खबर को द लोब द मैदान भी या द पार्लियमान, मसलक इलाकाई भी या खामी, खबर को स्तासु भी या स्तासु द चापेरियाल, रसूबा स्तासु वक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोली शे तासु मौजूआती इल्मी और सेंसी मालूमात अखबारी नड़े के द अखपल कोरबा अहमदजार सरा, सिर्फ और सिर्फ पा अमन रेडियो नेटवर्क। अमन रेडियो नेटवर्क, जुन रंग और अमन। खबर को द लोब द मैदान भी या द पार्लियमान, मसलक इलाकाई भी या खामी, खबर को स्तासु भी या स्तासु द चापेरियाल, रसूबा स्तासु वक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोली शे तासु मौजूआती इल्मी और सेंसी मालूमात अखबारी नड़े के द अखपल कोरबा अहमदजार सरा, सिर्फ और सिर्फ पा अमन रेडियो नेटवर्क। अमन रेडियो नेटवर्क, जुन रंग और अमन।

0: रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: चैनल
3: दा रेडियो अमन 88.4 करते पदे पंदे बटे कुल कुल प्रोग्राम नवी तयावरा हो जयावरम
2: रेडियो अमन 88.4।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Azamah. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

0: लोलो शॉपिंग सेंटर ला सो कोरली गेली दीदी इनाम दुकानदार चे पके नास्ती दुकानदार दे और डीर दुकानदार आंदी चे हुई सर जमुंग प्रोडक्ट में लवीगी मेरे लिए सही था इंशाल्लाह जब दुकान मालूमातो का मकाना और जब प्रोग्राम की इंशाल्लाह तखसिम प्रोग्राम ना और सहर मा जिगर मास होतन द मेरे लिए मीरान शाह बस स्पेशल एड्रेस से शामिल है कम सही था बाकी दा हाफिज जहीर भाई नंबर बदर था मैसेज की दरू लेगा माँ खा खबर दादा चिता हाफिज जहीर भाई था यो कालो का चे मौलाना से दल था प्रोडक्ट चाचा सारा मिला भी गया बता दो टूल दुकानदारा ने याद की खास सही था मीरान शाह मेरे लिए खबर दुमरा फासिला ना नजदी थी ना
1: अमन मार्केट ना
0: सही था नंबर दर सारा दा हाफिज जहीर भाई शेयर को महा एमन उदास टिक ना अवदार तो हुआ या चिकम यो प्रोडक्ट दा सीधे चस्ता डेर ज्यादा खोख दे होती है रेगुलर इस्तेमाल है बखुदे बावरों का जमा वेल जित भाई इसमें फार्मूला ब्यूटी क्रीम याद है आओ निन्यानवे परसन जमा दा खुएं दे चिजमा प्रोग्राम से रमी ने कही द इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम दवा जे कही चे आगा इस्तेमाल की दरे सलोर रजे दा से खेस्त की चे आगा भी आप मजबूर शी दे प्रोडक्ट सर और कपने सर अपमी ने कवलो बांधे सही था ठीक था डेरा मना ना एमन उदास खुशहाल हो से एमन उदास जमा खोर मां सर मलगे रेवा और इनशाला तजदा हाफिज जहीर भाई नंबर चेकम दे नो आगा पो मैसेज के दर लेगा मानो डेरा बदरता आसान है।

और ये जो इनाम है ना, ये आप लोगों को मिलेगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही मैं कहूंगा कि यूनिक सा है, क्योंकि आप लोग जो है ना ये जीत जाएंगे और ये लेके जाएंगे घर, ठीक है। और ये इनाम बहुत खूबसूरत सा इनाम और जिनेर कॉस्मेटिक्स की तरफ से आप लोगों को मिलेगा, सही है।

हाँ जी नो नन बता सो दवाए जमुन का दागा न्यू प्रोडक्ट के मुंग सर दे फेस वॉश खुद फेस वॉश एग्जैक्ट नो मसवी दा बता सो मुंग ते मैसेज के सेंड करवाए आओ वर्सरा वर्सरा बाम तासु दबिया तासु दबिया इनाम मिलेगी खा चिचा एग्जैक्ट नो मुंग तसीद को और जवाब राको नागी तब मिलेगी डिजाइनर कॉस्मेटिक्स ल तरफा द नेम वाला फिसवाश चिकुम दुई मुंग जवाब।

हाँ जी देने जी गो मकाल में देने उचित को अस्सलाम वालेकुम वेलकम वेलकम चुडू बदलो रिहान भाई शो सो स्वीट

0: बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
0: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवाओ थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी, ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी, नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सरबा ने मालश की, नो दद पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुरजवल बंदवी, वेख्तान गण और उजद कवी, देसर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी, जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-36-36 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

स्किन पॉलिश द खुजिफा कंपनी उसे इस्तेमाल कीजिए अच्छे रेतों से डायरेक्ट लास्ट मिनट से पिंजलास मिनट से पल्लोस पे अपशे मक्स पी नवल घोड़े द खुजिफा कंपनी शिफा स्किन पॉलिश इस्तेमाल

0: खुशखबरी खुशखबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब ममालिक, यूरोपी ममालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
0: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जन स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवाओ थोरो निशान वाला खुजीफा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण और उजद कवि देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-36-36 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

कदर मनोदिन के शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फ्राडा की यूज़ली जरूर इस्तेमाल के और दे बेहतरीन प्रोडक्ट ना हमेशा दे पूरा फायदा होगा।

आपको जिफा कंपनी शिफा प्रोडक्ट उतुस्ता चेयर ता मिलावी जी और इन में दिकंदूर ते सारा शेयर करी जी होना नहीं ना शेयर करूं जी सबू यूज़ अली बिया ते तुसे सारा अगर ठोल दिकंदूरों हज़रात चे गे सारा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट मौजूद है अगर वो तुसे ता यू यू दरवशाया बिया तुसे आगे तत्लाई शे और दा प्रोडक्ट ना रोड़ाई शे।

0: ही खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: दहर झण आवाज रेडियामन आवाज रेडियामन 88.4 नेटवर्क मुंगरवळूस तासु लपारा दगशान मलमती पर भ्रमण चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंगस तासु सरयो रेडियामन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο είχε παντασαπάρσει δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τις ετάρ κανά πασαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με ζητή μόχο κορτά national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρε κανά, τα γιλε βε χάρ βαθτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε κανά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη ρικρέ τη, ωστόλ κούρβαλα να χωσούλ τη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब्रो उदार तो या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चि कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो दो मोता चेरता मिला।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
3: कारोबार हो या फरमाइश, मसाइल का हल हो या सेहत करार, बेक टू बेक हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।

सर तरजी प्रोग्राम से कॉल से मिले भी कॉल कवल से 09272912921 यानी कि पीडीसीएल नंबर बने कॉल कवल से 09272921292 मैसेजेस 8583 बने सुबह हम मैसेज रोगल लाभ बिल्कुल शामिल जी तारहन मैसेज कराई मना था टेक मैसेज कराई देना इलावा अक्सा मैसेज छुट्टी अक्सा मैसेज कराई दे मिस रोशनी हम मैसेज कराई देन लो डॉक्टर इज अ मैसेज कराई और देन लो सुबह हम मैसेज रोगल बठोल शामिल जी लश के बाद इंतजार करवे

सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, डेरा मनाना, कॉल कवले यो जहान मनाना, सॉरी मैसेज कवले डेरा मनाना। थैंक यू मिस रोशनी। नेक्स्ट सलाम रिदर बखीर रगले डे टाइम बाद में रोमी हटक फ्रॉम कैरक नन में मैसेज जक वक शो सासु पशान वीरोना दो। अच्छा लगसरंगे और नन्ना। अच्छा जी, और आयशा मनत सोनिया फरिश्ता आयशा बाबी को सलाम ताता सलाम, और आयशा तक गमजन संदरा पले का वेले लादे खैर वकी। जी सही डेरा मनना, थैंक यू रोमी हटक। डेट है बाद मैसेज कर दे प्रोग्राम की तरह हर के लिए भी यही।

और प्यारे भाई ये मेरे लिए सॉन्ग प्ले क्यों नहीं करते। और सही ठीक शब्द से कोशिश करो, वरना मैंने बिल्कुल भी खफा नहीं होना। मैं ऐसे सारा फ्रॉम बनो खजी बस ना खफा किसी भी कोई भी ना दर तब लेके हूँ बिया हो सॉन्ग जरूरत नहीं तब लेके बोले डेरा मनना अधीन अलवा। नेक्स्ट मैसेज मुस्कान हटक मैं

सही सही खजू डेरा मने ना टॉपिक मने से खबर खड़ी डेरा मने ना मुस्कान हजक लो या खजा सही नेक्स्ट प्यारे भाई आपको पता है कल मैं अच्छा जी सही था आयशा और सारा मैसेज करे रहे डेरा डेरा मने ना बस खैर रहे दासे दासे कल कल बगैर सी अमी खबर जरूर मनाए आओ अमी हो अमी भी नो बस खैर रहे मी कैंसिल करी दो मतलब ताकि चुकम दे कैंसिल करे दाई नो बिल्कुल देवने खबर के जमा ठीक छा जगह जी अमी में चुकम दे देखी फायदा ली दली भी ठीक छा नो डेरा मने ना असलाम तारिक भाई अमी साथ में रेडियो सुन रही है कह रही है कि ये तारिक भाई है और आज हमने आपकी आवाज अम्मी को सुना दी मनाहल हो भाई एसएमएस पढ़ ले अब खजी सही डेरा मने ना बस अम्मी था मोतरफ नहा डेढ़ सोलो मीना भी आया अम्मी गोले शाह हो एक ना नौ डेरा मन ना के अम्मी गोले यो जहान मने ना आओ अम्मी विष दुकाना उदासे वका चाय वर्तता यो रख गना दसे मतलब खड़ा चाय वर्त तयूर के ना खैर देखा खड़ा नहीं सरा चाय वर्त तयूर का बस अमी गोले स्पेशल ख्याल होता शाह डेरा डेरा मानना ना उसको टाइम खत्म शो दे कहीं अमी गोले पनों बने मोई वास अंदर जरूर प्ले का बोला और खैर बल प्रोग्राम की जरूर तब ले का

अच्छा जी जी और सर खबर लिख के लिए जी ठीक छोटे रहो ना आयशा और सारा मैसेज कर दे। अच्छा आयशा मैसेज कर दे बनो ना ढेर ढेर मन ना प्यारे भाई वो फ्री मैसेज वाला खैरियात दोबारा कब होगा मेंशन सारा फ्रॉम बन्नो वो तकरीबन एक साल बाद होगा दोबारा ठीक है तेरा मनना। नेक्स्ट सलामुना वेलकम वेलकम मीना किरहान बहुत दिनों बाद मैसेज किया सब आरची को सलाम और एम एस जी भाई को स्पेशल सलाम और आपको भी दिल की गहराई से और सब लिस्टर को सलाम वालेकुम सलाम डेरा मनना किरहान मैसेज को बोले लोया खासी डेरा डेरा मनना जी दिन लंबा नेक्स्ट मैसेज जिंदगी तो जीना है मना थचक तारिक सर सलाम में वर्ड के आयशा मिस रोशनीता तरहान था छुट्टी एक था और आयशा था और टोले था वालेकुम सलाम डेरा मनना और मन थक गई मोहत चाय डर खान रुकवी और तुसे अक्सर प्रोग्राम के दा खबर कवई छे बोडा गान खलक चाय डेरे छी दा खो जहो देना बाद चाय नस कम चाय बारे के यू शेर दाई कहते हैं कि हम अपनी अपनी किताबी इश्क में चाय को अपनी महबूब लेते हैं। अच्छा जी सलाम टू ऑल सी टाइम डॉक्टर मानूर।

और बस अल्लाह दी खैर खैरियत से रवर सबा और प्रोग्राम हो चुका हूँ देखना डेली डेट है हमारे नवी सिर्फ और सिर्फ मंगल पौर दस पे दस न बारह पुरे और दिन बुध पौर दस पे बारह बजे पुरे वृदायशी देने लगा द इतवार पौर मॉर्निंग के उर्दू के प्रोग्राम में दस हर आठ ना नौ बजे पुरे और दिन लगा इतवार पौर वृद्धि बारह नाइक बजे पुरे हम भी प्रोग्राम और दिन लगा पीर पौर द माजीगर चार ना छह बजे पुरे हम वृदायशी हो द तरीका इधर से दुकना टांग के बिल्कुल दस तरीके से वृदायशी स्ट्रीमिंग से कम देखा ना www.amanradio.com मने वृदायशी और www.amanradio.com दस के लहा गूगल के वर्के नो बिया बदर तमाखित द्रे चैनल रोशी करक टांग बटाग्राम नो तब वके करक चुकम दे सिलेक्ट के नो पासा ना इसरा पो टांग के हवरदायशी स्ट्रीमिंग बांधे

बहुत अच्छा किया रोमी के मैसेजेस के लिए। और हम सादा लोग हैं, अच्छे मैसेज करते हैं। रोमी को शरारत, रोमी तो शरारत कर रही है। अच्छा सही था डेरा मरना, थैंक यू मैसेज के बोले। यो जहान मेरा ना इतना हमोशिया क्यों होती है तेरे आगोश में, इतना हमोशिया क्यों होती है तेरे आगोश में। एक कब्रिस्तान, लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद करते हैं। फिर हाँ मैसेज करे डेरा डेरा मन ना जी रोमी हटक मैसेज कराए।

अच्छा जी, और यही कहना चाहिए मैसेज दासे तसलाई सरा जोन सरा पुड़ाओ की शमिली नखे ना जी बिल्कुल शमिला हो रोमी खचक मैसेज करें। और वही कहना चाहिए भाई बने में खापा सर गलीब। अच्छा अच्छा सही डेरा मरे ना जी डेरा मरे ना। और नेक्स्ट सलाम सर कैसे हो, मैं सुनिहान विद मी माय कजन सारा खुशबू अन्नम एंड सायरा, टुडे इज माय बर्थडे, सब की तरफ से आपको सलाम। शो लाजवाब है खजी डेरा मन ना, वालेकुम सलाम। और तो सिनन बर्थडे हमदा नो बिल्कुल तो सर डेर डेर डेर डेर मुबारक शाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। डेरा मन ना थैंक यू सोनिहान। और नेक्स्ट ओए भाई, अच्छा जी ना ना ना ना डेरा मनन अच्छा मैसेज गड़े पता न सनम ने लिख लाए खैर डेरा मनन अरे फते टेक करे शगिल वागर बदन के शिमाली विजान के प्रोग्राम और रमा तारिक ला सडे माशी सलामोना ठुल बदन के तसलाम। डेरा मनन त सडे माशी यो जहान मनन अरे फते टेक मैसेज के वाली जहान मनन सलाम छो आयशा आयशा तारा मनत इल्मा रोमी आईना मनाहिल और मुस्कान एंड अक्सा छोटी छोटी आमना जलाल मिस रोशनी रिहाम खान मलिका फरिश्ता मैं सोनिहान ठोलो तो सलाम दे डेरा डेरा मनन। और शकील खान मैसेज कर दे वाह वाह वाह सर जी सलामत रहो शकील खान ढुमेल डेरा डेरा मनना शकील खाना। जी दिन लवा अरे फते चक्कर शकील लवा खबर दुन का है तरक लला तो था स्पेशल सलाम रात भाई था मासूम लला था अख्तर नवाज लला था नईम भाई था सफदर लला था शाहिद लला था रिहान भाई था इकराम लला था मौलाना सिब था नजीर भाई था मेजमान भाई था और देन अलावा तारिक लला वैसे जड़ाई शुरू दो ठूल लिस्नर था सलाम वालेकुम असलाम। हाजी जड़ाई खुला नष्ट दे शाम आगे तो डेढ़ टाइम पोते दाएं या हो गर्मी दूजी था गर्मी से रहते रखी डेरा मना ना। और यही कहना चाहिए तारिक लला करक के बरान शता कना नोर नोर शये बास अल्लाह दे खुशाल सता अला दे गोल वाड़ा मा डेरा मनना थैंक यू रिफत चेक। और सरा दे तासु ठूलो बिल्कुल बरान उसे माशाला कर रखे और मौसम डेर जबरदस्त सही मौसम चेंज से गर्मी वा नवोज बन शला मौसम सही सी डेरा मनना रिफत चेक। अरे ऐसा दा चा फंक्शन दे हाजी डेरा मनना सोनिहान मैसेज की पता नश्ता कम टाइम पर शुक वे वेले खजी ना बस बारह बता नजदीक है ना बारह पर इंशाल्लाह शुक वो था डेरा मन ना मैं डॉक्टर अरे सोनिया को बर्थडे बहुत बहुत मुबारक डेरा मन ना भाई नन हो मौसम समाई दाई बनो के बारान शुरू दा हो सिग्नल पो एल्फी ताम दी माशाल्लाह। खजी डेरा मन माशाल्लाह डेरा जबरदस्त खबर लिख ली अच्छी सिग्नल पहल फीताम दी के रहान मैसेज करे थे डेरा डेरा मन्ना ना बस इधर मेरा गुजारा कभी कना या हाँ शायद मैसेज हो कम अज कम कीजिए।

और सुनिहान मैसेज कर रहे थे कोई ऐसा विश करता है। अच्छा जी सही था डेरा मानना, थैंक यू। नेक्स्ट प्यारे भाई, न्यूज में ये क्यों नहीं होता कि आज तारिक भाई का शो का इम्कान होगा। मैं आज सारा आयशा फ्रॉम बन। जी डेरा मानना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी टाइम शुकम डेरा सरा खत्म शुभ दे ठोलो डेरा ज्यादा मानना चा प्रोग्राम से कॉल वो को चा प्रोग्राम से मैसेज वो को दागे ठोलो डेरा ज्यादा मानना कॉल और जी हो मजीद कॉल दो पर सॉरी फॉर दैट मजीद कॉल शुकम प्रोग्राम के नशम से मिलो ले द ठोलो डेरा ज्यादा मानना चा प्रोग्राम से कॉल वो को चा प्रोग्राम से मैसेज वो को दागे हाँ डेरा ज्यादा मानना दिल चा प्रोग्राम स्ट्रीमिंग बांधे बहुत दागे हाँ डेरा मानना कवि नो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की बात दर्श रखी छी यूजल व्या मुलाकात और नंदे बिल्कुल वेंसडे यानी बुध बरस नौ तुसरे मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम की कीजी पता न लगी जी कला बदर्श रखी जी मुलाकात आज कम टाइम उधर तवशल पे बनी बन चलाई प्रोग्राम ब्याह पता न लगी आगे ना मखिर रोशो खजी प्यारे भाई ये मैसेज प्रोग्राम में शामिल करो बस मुसरफियात भी डिजियत कला कला खजी नेक्स्ट जिंदगी दुजना है मना थे तारिक शेर मोता पदे गाना प्ले नकड़ा हो। अच्छा जी डेरा मनना थैंक यू सो मच मैसेज के वाले खजी टाइम दे खत्म शुभ ठोलो मनना चा प्रोग्राम से कॉल वो कुछ प्रोग्राम से मैसेज हो गए ठोलो डेरा ज्यादा मनना की पेंशल नेक्स्ट प्रोग्राम की वो दर्श रखी मुलाकात और ठोलो मनना चा प्रोग्राम से कॉल नो लगे दो आगे ना सॉरी फॉर दैट देन लवा प्रोग्राम की सदा से खबर शिव पे वो तो खबर शिव ना सॉरी फॉर दैट आगे दो पर हम नो देन लवा अच्छा मैसेज माने भी शामिल करे हालांकि मैं कोशिश हो के ठोल मैसेज शामिल कर या दिन लो अच्छा कॉल कबूल कोशिश करे हो कॉल ये वन लगे दो ट्राई हो कर लस्तड़ा शोर बांधे हो खैर खपके जी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की वो कॉल जरूर लगी जी। अच्छा जी मैसेज चेक कर दे सुनिहान मैसेज कर डेरा जिया मैंने ना खजी टाइम तो खत्म शुए इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की उधर से की जुल्बा मुलाकात और आखिर की वोर भी दागा सलीम और वत पवासी दागा संदरा नो दस संदरा हाँ तुस वोर हुई और दिस संदर से बदना गोड़े इजाजत